0: सच्चा आत्मचिंतन है। इसलिए किसी को बदलने से पहले स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सच्ची अच्छाई की शुरुआत हमेशा अपने आप से ही होती है।
1: अनमोल विचार के बाद आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृवंदना।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए एग्री टिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें कटाई उपरांत सब्जियों की देखभाल के संदर्भ में। खाद्यान्न पदार्थों में सब्जियों का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। सब्जियां हमारे शरीर के लिए प्रचुर मात्रा में खनिज लवण एवं विटामिन प्रदान करती हैं, जो कि अनाज व दालों में कम पाए जाते हैं। खनिज लवण एवं विटामिन हमारे शरीर की कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, सब्जियों को सुरक्षित आहार भी कहा जाता है। हमारे प्रतिदिन के आहार में लगभग 300 ग्राम प्रति व्यक्ति ताज़ा सब्जी की ज़रूरत होती है, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। हमारे देश में विभिन्न जलवायु एवं पारिस्थितिक भिन्नता होने के कारण लगभग सभी सब्जियां पूरे साल मिलती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पर सब्जी उत्पादन इतना होने के बावजूद भी सब्जियां हर एक व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाती, और एक अनुमान के अनुसार कुल सब्जी उत्पादन का लगभग 20 से 40% भाग

0: लड़ाई के बाद खराब हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इतने ऊंचे स्तर की बर्बादी को समाप्त करना तो असंभव है, लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान दें तो इस बर्बादी को हम कम तो कर ही सकते हैं। ये स्थिति हमारे इन द्वीपों के लिए और भी नाजुक है, क्योंकि यहाँ पर जमीन का अभाव है और जो भी उत्पादन होता है वो दूर दूर बिखरे द्वीपों में होता है। किसान भाइयों, सब्जियों की तुड़ाई के बाद हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि सब्जियों को हम खराब होने से रोक सकें, आइए इस पर कुछ चर्चा करें। सबसे पहली बात तो यह है कि सब्जियों को भरपूर वृद्धि पर ही तोड़ें। अगर सब्जियां बहुत जल्दी तोड़ दी जाएं या बहुत पकने के बाद तोड़ी जाएं तो इनमें ज़रूरी पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। सब्जियों की तुड़ाई के लिए सुबह एवं शाम का समय ही ठीक रहता है। सब्जियों को तोड़ने के बाद साफ पानी में 10 मिनट तक डुबो कर रखें ताकि इनमें उपस्थित जो ऊष्मा है वो निकल जाए। इसके बाद इन्हें किसी छायादार जगह पर रखना चाहिए। जितना हो सके सिर्फ खाने वाला भाग ही बाजार में भेजें, अन्यथा बाजार में ना खाने वाले भाग को ले जाकर वहां पर आवारा पशुओं को बुलावा मिलता है तथा सब्जियों के ऐसे भागों के सड़ने से सब्जी मंडी भी गंदी हो जाती है। किसान भाइयों, सब्जी मंडी में सब्जियों को खुली धूप में ना रखें। ऐसा करने से सब्जियों में उपस्थित जो पानी है वो सूख जाएगा और पोषक तत्वों पर कुप्रभाव पड़ेगा। बहुत गर्मी होने पर साफ पानी सब्जियों पर छिड़कते रहें ताकि इनमें उपस्थित पानी सूखने ना पाए। उपभोक्ता जब सब्जी खरीद कर घर ले जाएं तब उपभोक्ताओं को भी कुछ एक बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सब्जियों को वो अपने घरों में थोड़े दिन तक सुरक्षित रूप से भंडारित कर पाएं। सबसे पहले साफ पानी से सब्जियों को 3 से 4 बार धो लें। ऐसा करने से सब्जियों में उपस्थित मिट्टी व अन्य कीटाणु धुल जाएंगे। धोने के बाद इन्हें सुखाकर साफ सुथरी जगह पर रखें। रसोई घर में सब्जियों का भंडारण ना करें, क्योंकि रसोई घर में स्टोव तथा चूल्हे के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो गर्मी निकलती है, इससे सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। रेफ्रिजरेटर में भंडारण के लिए अच्छी किस्म की पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, जिससे सब्जियों का भंडारण ज़्यादा समय के लिए किया जा सके। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो सब्जियों में खासतौर पर जो तुड़ाई के बाद नुकसान होता है उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्रीटिप्स कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल।

0: शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia,

जहाँ जाने सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज

सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कैंबल पे लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी आज ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी आज ही दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

0: एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल यानी 12 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 13 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 13 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बूका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही सुबह 8:45 पर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 13 तारीख को सवेरे 7 बजे उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप जाएगा और जलयान की वापसी उसी दिन दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे शहीद द्वीप जाएगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूह को सुकून देते हैं और होठों को मुस्कुराहट, और अगर इन्हीं खूबसूरत शब्दों

को गीत में पिरो दिया जाए तो चलिए शब्दों की दुनिया से निकलकर सुरों के उस खूबसूरत सफर पर चलते हैं जहां हर धुन एक एहसास है और हर गीत एक तराना।

तराना सिर्फ एक गीत नहीं, दिल की उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। जब दिल खुशियों से भर जाए तो हर धड़कन एक खूबसूरत तराना बन जाती है।

जिंदगी भी एक तराना है, कभी सुरों में सजी तो कभी खामोशियों में लिपटी। कुछ तराने ऐसे जिसे दिल से सुना जाता है और वो हमेशा हमारी यादों में बस जाते हैं।

0: तराना सिर्फ एक गीत नहीं, दिल की उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। तो चलिए आप भी आज के दिन की शुरुआत कीजिए खूबसूरत यादों और एहसासों के साथ, और सजाइए एक मधुर सुरों का तराना, और दीजिए अपनी रेडियो सखी हेमलता को इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जो केंद्रित था तराना शीर्षक पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 398वीं कड़ी।

अयोध्या में श्री राम के राजतिलक की तैयारियों की धूम मची है। एक बार फिर नगर का रूप साज सिंगार से निखर आया है। सगे संबंधियों को निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी जा रही हैं। लंका से साथ आए विशिष्ट अतिथियों की सेवा और सत्कार के लिए अलग सेवक नियुक्त किए गए हैं। गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार श्री रामचंद्र के लिए कुल के अनुरूप सूर्य के समान सुंदर और तेजस्वी सिंहासन मंगाया गया है।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 398वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए गांधी चर्चा।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांति दूत गांधी की। एक दिन एक धनिक महाशय गांधी जी से मिलने के लिए आए। उनकी बातों का कोई अंत नहीं था। देखते देखते एक घंटा बीत गया और बाहर दूसरे मिलने वालों की भीड़ सघन होती चली गई। उनमें एक डॉक्टर भी थे। उन्हें गांधी जी से कोई बहुत ज़रूरी काम था। वे बहुत बेचैन हो रहे थे। एक घंटे बाद जब वे धनिक महाशय चले गए तो उनकी जान में जान आई। अब उनकी बारी थी। वह अंदर पहुंचे, परेशान तो थे ही। कुछ कठोर होकर बोले, बापूजी, क्या आप उस बैल को

रहे थे उसमें से कुछ दूध निकला भी। अत्यंत नम्र होकर मानो क्षमा मांग रहे हो गांधी जी बोले, भाई मैं लोभी ठहरा। जिस तरह तुम सब लोगों की खुशामद करता हूँ वैसे ही उनकी खुशामद भी कर रहा था, शायद किसी दिन देश के काम आ जाए। और ये कहकर वह हंस पड़े। अस्पृश्यता निवारण के संबंध में उन दिनों गांधी जी उड़ीसा में पैदल यात्रा कर रहे थे। सायंकाल के समय पड़ाव पर पहुंचकर प्रार्थना सभा में अनेक व्यक्ति उपस्थित होते थे। वे कुछ न कुछ भेंट भी दिया करते थे, कभी वो भेंट नकद होती, कभी वस्तु के रूप में। प्रार्थना प्रवचन के बाद गांधी जी उन वस्तुओं को नीलाम कर देते। उस दिन वे कटक में थे। सदा की भांति लोगों ने बहुत सी वस्तुएं भेंट में दी। गांधी जी उन्हें नीलाम करने लगे। एक कुम्हार ने बाल गोपाल कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति भेंट में दी। उस बेचारे कृष्ण की भी नीलामी की बारी आ गई। गांधी जी ने उस मूर्ति को उठाया और बोले, अब तुम्हारी बारी है। कलकत्ता के उद्योगपति श्री भागीरथ कनोडिया उस सभा में उपस्थित थे। वह हंसकर बोल उठे, बापू आपने तो कृष्ण को भी नीलाम पर चढ़ाने से भी नहीं बख्शा। गांधी जी खूब हंसे, बोले, अरे तुम जानते नहीं, ये तो सदा ही नीलाम होता रहा है। कोई नीलाम करने वाला और कोई खरीदने वाला होना चाहिए। शायद कनोडिया जी को विश्वास नहीं आया। गांधी जी ने कहा, क्या तुमने मीरा का ये पद नहीं सुना? भाई मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तोल। उस दिन सबसे अधिक कीमत उसी मूर्ति की मिली। श्रोताओं, नवाखली प्रवास के समय एक शाम को दूध नहीं मिला। गांधी जी बोले, तो क्या हुआ, नारियल का दूध बकरी के दूध का काम अच्छी तरह देगा और बकरी के घी के स्थान पर नारियल का तेल खाया जा सकता है। मनु ने नारियल का दूध बकरी के दूध की तरह ही तैयार किया, लेकिन वह दूध पचने में भारी पड़ा। गांधी जी को दस्त आने लगे। शाम तक बहुत कमजोरी हो गई, खूब पसीना छूटा। एक बार तो उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। ये देखकर मनु घबरा गई। उसने निर्मलदा प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस को पुकारा। सोचा, सुशीला बहन को बुलवाना चाहिए, कहीं कुछ हो गया तो मैं मूर्ख समझी जाऊंगी। सुशीला बहन प्रार्थना से पहले ही चली गई थी। ये सोचकर उसने सुशीला बहन को चिट्ठी लिखी और उन तक पहुंचाने के लिए निर्मलदा को देने चली। तभी सहसा गांधी जी जाग उठे, बोले, मनुड़ी तूने निर्मल बापू को पुकारा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर तेरी उम्र को देखकर क्षमा करता हूँ। फिर भी ऐसे समय में कुछ ना करके हृदय से राम नाम लेने की तुझसे आशा रखता हूँ। मैं तो मन में राम नाम ही ले रहा था, तू भी निर्मल बाबू को पुकारने के स्थान पर राम नाम लेना शुरू कर देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब तो इस बारे में सुशीला से ना कहना, ना उसे बुलाना, मेरा सच्चा डॉक्टर राम ही है। उसे मुझसे काम लेने की गरज होगी तब तक वह जिलाएगा, नहीं तो उठा लेगा। मनु ने जब गांधी जी की ये बातें सुनी तो उसने चिट्ठी वापस ले ली। गांधी जी बोले, तो तूने सुशीला को चिट्ठी लिखी थी? मनु ने उत्तर दिया, जी हाँ। गांधी जी बोले, आज तुझे और मुझे ईश्वर ने बचा लिया। ये चिट्ठी पढ़कर सुशीला दौड़ते हुए मेरे पास आती, वह मुझे जरा भी अच्छा ना लगता। मैं तुझ पर अपने पर चिढ़ता। यदि राम नाम का मंत्र मेरे हृदय में गहरा उतर जाएगा तो मैं कभी बीमार होकर नहीं मरूंगा। ये नियम हर आदमी के लिए है, केवल मेरे लिए नहीं। और गांधी जी उसी रात को पूर्ण स्वस्थ हो गए। श्रोताओं, एक बार कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी से कहा, सारी दुनिया के लोग आपके पास आकर आपसे बातें करते हैं, अपने दिल की बातें आपसे कह देते हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, हमेशा आपके नज़दीक रहती हूँ, परंतु फिर भी दिल खोलकर आपसे बातें करने का मौका नहीं पाती। क्या ये मुनासिब है? मुझे भी तो आपके साथ अपने दिल की बातें करके अपनी अज्ञानता को दूर करने का मौका मिलना चाहिए। बाहर के लोग मुझसे ईर्ष्या करते होंगे कि मैं आप सरी के महात्मा की धर्मपत्नी हूँ। आपसे जी भर कर बातें करके सद्ज्ञान प्राप्त करती हूँ, लेकिन मेरे दुख को कौन जाने, मुझे 5 मिनट

बातें करने का समय नहीं मिलता। स्नेह भरे स्वर में गांधी जी बोले, तुम सच कहती हो, मुझे तुमको बातें करने के लिए समय ज़रूर देना चाहिए। तुम कहो कितना समय दिया जाए। बा सकुचा कर बोली, आपको तो सवेरे 4 बजे उठने से लेकर रात को सोने के समय तक लिखने पढ़ने और मिलने वालों से बातें करने में ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती। मैं कैसे कहूँ कि मुझे इतना समय दे, ये तो आप ही जाने। गांधी जी ने कहा, अच्छा तो आज रात को सोते समय मेरे सिर पर बादाम का तेल लगाने का काम तुम संभाल लो, उसी समय मेरे साथ बातें करने का अवसर भी मिलेगा। आज से कोई दूसरा आदमी मेरे सर पर तेल नहीं लगा सकेगा। तुमको फुर्सत ना हो तब तुम्हारे कहने पर ही कोई और इस काम को कर सकेगा। तो श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर हमारी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी और आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, इसीलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर यानी 7 बजे सुनिए जनसूचनाएं। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सवेरे 7:30 पर सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे विशु भटनागर और भूपेंद्र। तरानी सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप उस्ताद सुल्तान खान का हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन सुनेंगे। संदेश टू सोल्जर्स

कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे एनसीईआरटी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर सुनिए निकोबारी कार्यक्रम। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा 12 बजे। 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम। 1:10 पर महफिले कवाली कार्यक्रम में फनकार होंगे मास्टर हबीब कवाल निज़ामी और बशीर अहमद। कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुन पाएंगे 1:30 पर। दो बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के साथ साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे डॉक्टर घनश्याम पांडे से की गई बातचीत का विषय रहेगा कंपोस्ट बनाने का सही तरीका। 6:30 पर सुनिए समाचार तरंगिनी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी आप सुन पाएंगे 6:45 पर। 6:55 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे दिल ने फिरियाद किया कार्यक्रम में। 7:30 पर युवानी कार्यक्रम के तहत सुनिए फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स। रात 8 बजे सुनिए चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार के बाद कुछ देश गान आप सुन पाएंगे 8:30 पर। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं, जबकि रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर संध्या समाचार, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर करंट अफेयर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:30 पर मौसम की जानकारी के साथ साथ सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवात विधेः बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शान्तिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि

0: फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु संवृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीय शिखर सम्मेलने ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारतम् ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्दुल फतह अल सीसी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यसौ अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुखमार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षिबलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रो यान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रो भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के इलाकों में वर्षा नहीं हुई। आज सुबह 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 93% और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीविजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा

31 डिग्री 31.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:23। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहे यानी विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे तक श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है, जबकि यात्री विमान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर यानी 7:05 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सवेरे 7:30 पर सुनेंगे कुछ फिल्में गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे विशु भटनागर और भूपेंद्र।

तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए। सवेरे 9 बजे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप उस्ताद सुल्तान खान का हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन सुनेंगे। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे NCERT प्रसारित की जाएगी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेर फेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। यह समारोह 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला पुलिस ने मॉडल स्कूल अबडीन में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं के जगदेश्वरी। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के

इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिश्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत कल सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। पिछली कीमत से आशय छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों में उत्पाद की सबसे कम कीमत से है। कंपनियां ऐसे तरीके से सर्च रिजल्ट में बदलाव नहीं कर सकेंगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। यूटी आत्मा प्रातरापुर ब्लॉक के तहत मसाला खेती की पद्धतियों का पैकेज कटाई उपरांत प्रबंधन, कटाई, प्रसंस्करण और भंडारण पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दक्षिण अंडमान के ग्राम पंचायत बिडनाबाद के कोड़ियागाट गांव में एक किसान की खेती पर किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती, कटाई, प्रबंधन, प्रसंस्करण और भंडारण में किसानों के तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है। इस अवसर पर किसानों को बेहतर उत्पादकता, गुणवत्ता और मूल्य प्राप्ति के लिए उन्नत पद्धतियों के पैकेज को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बिडनाबाद के सरपंच वी कुमार मुख्य अतिथि थे। सत्र में सहायक कृषि निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्र सीपी घाट के विषय विशेषज्ञ, कृषि अधिकारी और कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में कुल 23 किसानों ने भाग लिया। कृषि निदेशालय अंडमान और निकोबार प्रशासन ने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत अनुबंध के आधार पर लेखाकार और सहायक सचिव पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों को यह समाचार प्रकाशित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, राष्ट्रीय पोषण माह और नशा मुक्त भारत अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का उद्घाटन समारोह कल समाज कल्याण निदेशालय के तहत ICDS अर्बन प्रोजेक्ट द्वारा टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। यह समारोह 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार की प्रमुख पोषण पहल पोषण अभियान के तहत विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के बीच पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बचपन के विकास के महत्व को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में समाज कल्याण सचिव हेमंत कुमार, समाज कल्याण निदेशक मोहित मिश्रा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक HM सिद्धराजू के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विभागों, पंचायतीराज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कल दक्षिण अंडमान जिला पुलिस ने मॉडल स्कूल अबरडीन में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान इंस्पेक्टर विजय कुमार, SI दिनेश कुमार जायसवाल सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। यह संवादात्मक सत्र स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के साथ साथ NDPS अधिनियम के तहत

कानूनी परिणामों पर केंद्रित था। अधिकारियों ने छात्रों को नशीली दवाओं की लत के परिणामों और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और पुलिस टीम द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कार्यक्रम का समापन छात्रों और शिक्षकों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ हुआ। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नशे के संबंध में कोई भी जानकारी साझा कर इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हैदराबाद के समन्वय से आपदा प्रबंधन भवन के प्रशिक्षण सभागार में द्वीप समूह में सुनामी के खतरों से बचाव पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। पहले दिन के कार्यक्रम में तटीय क्षेत्रों में सुनामी की तैयारियों को मजबूत करने, संस्थागत समन्वय को बढ़ाने और सामुदायिक योगदान के उद्देश्य से सभी जिला प्रशासनों, संबंधित विभागों के अधिकारियों और जिला तथा ग्राम स्तरीय सुनामी रेडी समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। आपदा प्रबंधन सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने सुनामी रेडी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जिला प्रशासनों, संबंधित विभागों और समुदाय स्तर की समितियों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र के साथ हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी ने अपने विचार रखे। मालवाहक जहाज एमवी चुगलुम 16 सितंबर को शाम 4 बजे हैडोजेटी से कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल और नानकौड़ी होते हुए कैमल बे के लिए रवाना होगा। जहाज संबंधित बंदरगाहों पर माल उतारने और चढ़ाने के बाद श्रीविजयपुरम के लिए वापस रवाना होगा। इस यात्रा के लिए माल बुकिंग आज से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शुरू होगी। माल चढ़ाने का काम 13 सितंबर से शुरू किया जाएगा। उप शिक्षा कार्यालय दक्षिण अंडमान की ओर से 15 से 22 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय के सभागार में अंतर विद्यालय शतरंज, योग और टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेर फेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। यह समारोह 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला पुलिस ने मॉडल स्कूल अबरडीन में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, देशराग्नि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जो आपके दिल को छू जाएगा। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक भाव है, अपने देश के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देने का संकल्प। ये गीत हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है जो अपनी मिट्टी को माँ समझकर उसके लिए सब कुछ लुटा देता है।

कभी कभी कुछ धुन सुनते ही वतन की मिट्टी की खुशबू अपने घर की चाह और देश से जुड़े हर एहसास फिर से जिंदा हो जाते।

हर देशभक्ति की धुन में एक अनकहीं कहानी होती है, हिम्मत, फर्ज और बलिदान की। ये हमें उन वीरों की याद दिलाता है जो अपने वतन के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं।

तो दोस्तों, वतन से जुड़ी ये धुनें सिर्फ गाने नहीं, दिल के एहसास है जो हर बार अपने देश के लिए और भी करीब ले आता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ अब कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।

0: श्रोताओं, अभी आप देशरागिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: दोस्तों, मुश्किलें कितनी भी आए, हौसला कम नहीं होना चाहिए। खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हर छोटा कदम हमें सफलता के करीब ले जाता है। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सुनते हैं सूचना।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, story

0: selling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए कुछ प्रसिद्ध फिल्मी गीत इस अंतराल के बाद।
2: नमस्ते, गोइंकास लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं सनम रे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है मनोज ने, धुन बनाया है अमाल मलिक ने और गाया है अरिजीत सिंह और अमाल मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हेट स्टोरी 3 फिल्म से आइए सुनते हैं, जिसे गाया है अरमान मलिक ने, रचना रश्मि विराग की और धुन बनाया है अमाल मलिक ने।

अल्ताफ सईद के संगीत निर्देशन में तैयार इश्क ने क्रेजी किया रे फिल्म का ये गीत जिसे गाया है अल्ताफ सईद ने और रचना की है अत्या सईद ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अगला गीत मोहित चौहान के स्वर में, आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत। गीत रचना इरशाद कामिल का और संगीत दिया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म भाग जॉनी से, लिखा है आरकू और फैज़नवर ने, आवाज़ है अंकित तिवारी की और धुन बनाया है आरकू और साजिद वाजिद ने।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका

0: मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है।

0: नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राईलैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा।

0: केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा कोट्टयम एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा एर्नाकुलम इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय झारखंड केरलम माहे मध्य प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड विदर्भ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने तेज हवाएं चलने बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा बदलता विश्व अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है। लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद। वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला। बॉलीवुड का वादा कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विशु भटनागर और भूपेंद्र सिंह का गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंसाफ की आवाज़ से। गाया है मोहम्मद अजीज़ और एस जानकी ने। गीत रचना इंद्वर की और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ये वादा रहा से। किशोर कुमार की आवाज़ में गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अगला गाना आशा भोसले की आवाज़ में। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, रचनाकार है मजरू और संगीतकार है ओपी नैयर।

0: सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, श्रोताओं सुनिए लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हेलो, मैं हूं एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के आवाज़ों में, फिल्म रोमांस से। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस्ताद सुल्तान खान का हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन। इनके साथ तबले पर उस्ताद जाकिर हुसैन ने संगति की है। तो लीजिए उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी पर बजाया पहले सुनते हैं राग नट भैरव, विलंबित रचना 3 ताल में व द्रुत रचना 1 ताल में निबद्ध है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, इस समय आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी वादन सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है उस्ताद सुल्तान खान का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव।

0: श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खान का हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन पर बजाया राग नट भैरव और राग बसंत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं, इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों। इस फिजा में, इस सभा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत

0: चांद से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। मैं सईद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी एफएम रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
0: आपकी आवाज़ सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी उन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूँगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफ़ी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है, और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंडोरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम

सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और ख़ासतौर से मैं जानना चाहूँगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू होगी और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहाँ तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू होगी, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम एफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उस समय होता है ना एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं, लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है?
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं करेज को इस तरह देखता हूँ कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें।
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मैं चाहूंगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूंगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफकोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जाए

0: रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुँचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
1: जी।
0: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रेस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एम्युनिशन खर्च करना।
1: ऑलराइट। बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजेंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं थोड़ा सा गीत संगीत भी सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है वो?
0: जी मैं चाहूंगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
1: वो दिस अ ग्रेट सॉन्ग है ना, पुरानी फिल्म का है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
0: जी,
1: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हेयर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: तो आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे पन्ना की तमन्ना, बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस होने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज़ में, यू नो। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोरदा के फ़ैन हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोरदा के फ़ैन हैं, लता मंगेशकर जी के फैन से भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो, लेकिन इनकी आवाज़ सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मैन एंड वेमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज़ उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज़ में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो, ऐसे एरियाज में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंस

0: विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
1: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं। और SSB की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये इसका मोटो है। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है, उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं। और सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ, जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं, कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहाँ बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूँ तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से BSc मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: SSB में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई, तो आपको ये SSB में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब SSB ज्वाइन किया तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
0: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है वो मैं कहना चाहूँगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
1: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि SSB ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
0: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स अलग अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदन

0: विकासशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई, तो धीरे धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
1: आपने

0: मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
1: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ख़ास तौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज़ थी उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया, और बॉर्डर एरिया हो या मैंने जैसे अपने का आप भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ अपने श्रोताओं को कि देश के अंदर जो गतिविधियाँ चलती हैं जहाँ पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है उसको उसका सामना करने के लिए उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है, और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा तो आपके वो क्षण कैसे थे?
0: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला उसमें मैं अकेला नहीं था, पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूँ।
1: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
0: जी, बताना चाहूँगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूँ,
1: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
0: जी बिल्कुल।
1: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है सैयद अफसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है?
0: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
1: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
0: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
1: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया, और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जांबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपके आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?

0: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं। इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
1: भावुक क्षण है। सवाल उतना आसान नहीं है, है ना? ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ़ोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। ये थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
0: जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज़ के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं। ऐसे में परिवार का अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सेक्रिफाइस करता है।
1: देखो, परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं, तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपनी प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है, और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं।
0: जी, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो
1: अरे, इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है, तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश,
0: गई।
1: किशोरदा की आवाज में, फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं, सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी?
1: जी, मैंने SSB वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDCE उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा, और इससे पहले कि आप उत्तर दें मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो हैं यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं, और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदीगर कोकानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ़ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज

0: लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं, और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से, राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है, और गुलाफशा इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि एसएसबी कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एसएसबी को सैल्यूट दे रहे हैं, एसएसबी कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए, सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं, सुरेश कुमार 68 बटालियन एसएसबी मणिपुर एल एंड ओ ड्यूटी कर रहे हैं सर, और एल एन ओ ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? एएसआई सुरेश कुमार आपसे परिचित हैं, एसएसबी के ही हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए। एल एंड ओ,
1: एल एन ओ बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है।
0: okay.
1: अभी आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहाँ तैनात है उसके अलावा अभी वहाँ पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहाँ पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहाँ पे बेसिकली उनका केएलपी वहाँ पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियाँ मणिपुर में हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपको ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें, और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें, और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें, और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहाँ पे जो है पूरी तरीके से उतारें, और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी।
0: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक हैं, और आपको दिल से वो बधाइयाँ दे रही हैं, कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूँ प्रोग्राम, एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के ज़रिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूँ, लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन।

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफ़र था वो कैसा था?
1: जी, यह सफ़र मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफ़र रहा है। मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया। एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोरल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस सफ़र ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है।
0: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं. जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था, और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं. और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं. तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है.
1: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकती है। जो मेरे लिए है, मैं बताना चाहूँगा, मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे। एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं, तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए।
0: वाह. और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप अपने संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं. नंबर है 9868107070, 9868107070. असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं. यहाँ पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हो. अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़ुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की ज़ुबानी, अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुँचाया जाए तो वो क्या होगा?
1: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है, तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए।

0: फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
1: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिलें, तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
0: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सईद अफसर से कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज़ मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफ़र में आपका साथ दिया है, उन्हें हमेशा याद रखना।
1: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है। मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं, आकाशवाणी के प्रति उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
1: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है बहुत ही जल्द, हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप, जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम मैं अपने ही अंदाज में लेना चाहूँगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाई गाँव CTGD पार्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर, नाम अपना नहीं लिखा। हाँ, सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंदन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफ कोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा हैं, 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में नहीं, टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूँ दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
0: थैंक यू सो मच।
1: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1370वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है। मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।

0: देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थीं। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: I am good, sir.
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
3: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful chirping birds.
6: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
3: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
6: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
6: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
6: Like us?
1: Would you like to listen?
6: Yes, sir.
3: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
6: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
6: Okay, sir.
5: We love to recite it.
1: As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a big white bear. Looking down at me. As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a ship sailing.
6: On a white sea.
1: As I lie on my back. Looking up at the sky.
6: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me. As I lie on my back. Looking up at the sky. Oh, it's fun to me. To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
7: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी। उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली। बस एक छोटा सा डिम बल्ब था। वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल्ब भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
8: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
6: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली

0: आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही।
4: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है।
7: होमी, ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
8: जी माँ, बिल्कुल।
7: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
8: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य

0: भविष्य में क्या करना है, बस यही विचार मन में बार बार आता है।
1: अच्छा, तो ये बात है। भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
0: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
1: अरे
0: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
1: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
0: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
1: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
0: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
1: कुछ नहीं होमी, बस करो।
0: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
3: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
4: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
4: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
0: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
0: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी जरा इसे देखो।
0: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
0: सर ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
0: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
0: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
4: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1

0: बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
1: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए वियरावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
0: होमी वियरावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
1: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
0: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
1: ऐसे समय में होमी वियरावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी वियरावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
0: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी वियरावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी वियरावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप

0: में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1370वीं कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
5: सिनला में ये रॉक रहे हम आगे गिरिए तका लमक तेलगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक

कुछ गलंग इंदा दलों चो ऐ हंग मेरे ताह लेन लंगा प्रोग्राम इंगे लाप हु हॉय इंगे दल गांग इन सिंगे तंगमु हेक इन हरेज ऐ हंग रोंगे तका साथ इद फैन कंडर तला हराप गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: नमस्ते, गोइंकास लेकर आया है गणेश पूजा का नया कलेक्शन। त्योहार की खुशियों के साथ अपने स्टाइल में लाइए एक नया रंग, नए डिजाइन, खूबसूरत रंग और बजट फ्रेंडली कीमतें, सब कुछ एक ही जगह। इस गणेश पूजा अपने त्योहार के लुक को बनाइए और भी खास, बिना बजट की चिंता के। तो आज ही आइए गोइंकास और चुनिए अपना पसंदीदा कलेक्शन। गोइंकास, हर त्योहार आपके स्टाइल के साथ।
1: ലളിത ഗാനങ്ങൾ ആദ്യം അരുന്ധതി ആലപിച്ച ഗാനം

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजरिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: फॉर ब्रिक्स पर्टिकुलरली हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स टुडे रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 1/4।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And the semi-final at Mochi in China this afternoon at 2:15 p.m. IST. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है महफिले कव्वाली कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के हमारे कव्वाल हैं मास्टर हबीब कव्वाल निजामी, बशीर अहमद और साथी। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं मास्टर हबीब कव्वाल निजामी के गायचन कव्वालियों से।

कोई दिल का सुकूनों सब्र सब कुछ टूट जाता है, यकीनन चाहने वालों से रिश्ता टूट जाता है। गरज अपने दो क्या।

जगत में सिवा होता है रुसवाई का गमरा है मोहब्बत में, मगर हिम्मत ना टूटे कम से कमरा है मोहब्बत में, समझ कर सोच कर रखना कदम राह

सकती है जालिम कभी फितरत तेरी। सारी दुनिया में है मशहूर नजाकत तेरी। शोख चंचल

श्रोताओं, अभी आप महफिल कव्वाली कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे कव्वाल थे मास्टर हबीब कव्वाल निज़ामी, बशीर अहमद और साथी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए फिर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत दिलवाले फिल्म से। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना,

0: तो चलिए फिर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत दिलवाले फिल्म से। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये सभी दोस्त एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और एसके पप्पी।
1: ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

आइए अब सुनते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आपने वजह तुम हो फिल्म का ये गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी बाराटांग से रमेश ने। हमारे अगले फरमाइश करता है जिला मुरादाबाद यूपी से मोहम्मद फरमान सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं निकाह फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े

0: रहिए एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
2: This year is a milestone.
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: Take to the world as a trusted partner.
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है।

0: प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफ एम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम के

के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम के बारे में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर। स्थानीय कार्यक्रमों के साथ नमस्कार।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: डियर फ्रेंड।
1: दोस्तों, दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता। हर दोस्त हर किसी के लिए खास नहीं होता। जो समझे बिना कहे दिल की बात, उससे बढ़कर कोई रिश्ता खास नहीं होता। हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम के इस सफ़र में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, अगर आप भी गानों के शौकीन हैं और सुनना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीत, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और रजिस्टर करवाइए अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। हम आपको कॉल करेंगे और सुनवाएंगे आपके पसंद के गीत। तो चलिए फिर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जुड़ते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से, जो कि रहने वाले हैं राजस्थान से, मोहनलाल प्रजापति जी। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, मोहनलाल प्रजापति जी से बात हो रही है
2: जी। खम्मा घणी हुकम।
1: खम्मा घणी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया हूं मैम।
1: और राजस्थान की क्या हालचाल है? वैसे मौसम कैसे कैसा है?
2: मौसम तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि बरसात है नहीं हमारे यहाँ।
1: अच्छा, बरसात नहीं हो रही है?
2: आप तो बरसात का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में अनुमान नहीं लग रहा है।
1: जी जी जी, आ जाइए बस। जी जी,
2: मौसम की जानकारी दे रहे थे अभी। हम सुन रहे थे आपको प्रोग्राम।
1: जी जी, तो आशा रखिए कि वहाँ पर भी बरसात जो है पहुँच ही जाएगी, है ना?
2: जी
1: जी जी। मोहनलाल जी, आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम के जरिए सुनना चाहेंगे?
2: आपकी कसम फिल्म का नाम है, किशोर दा और लता जी की आवाज़ है, और करवटें बदलते रहे हम।
1: जी, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है। तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ओके जी,
1: धन्यवाद।

0: चलिए अब संपर्क साधा करते हैं संदीप जी से, जो कि रहने वाले हैं ओबेदुल्ला गंज एमपी से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: बहुत बहुत नमस्कार, संदीप जी से बात हो रही है।
1: जी मैं मध्य प्रदेश ओबेदुल्ला गंज से मैडम, संदीप नामदेव।
0: जी नंदीप जी कैसे हैं?
1: आपको सभी दोस्तों को नमस्कार मैडम।
0: सभी ने आपका नमस्कार कबूल किया है। और वैसे क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मैडम जॉब करते हैं प्राइवेट।
0: अच्छा जॉब करते हैं, इसके अलावा क्या शौक रखते हैं?
1: मैडम रेडियो सुनने का, गाने गाने, पुराने गाने का।

0: काफी पसंद है मेरे को।
1: अच्छा।
0: और फ्री टाइम में अपने रेडियो के दोस्तों से बात करते हैं, काफी देर तक बात होती है।
1: चलिए अच्छी बात है ना। तो वहाँ का मौसम कैसा है वैसे?
0: मौसम तो खुशनुमा है मैडम, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और खुल चुका है पानी।
1: जी जी, रिमझिम बारिश हो रही है, तो इस बीच आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज सुनवा दीजिए मैडम, सब दोस्तों को, सब स्टाफ के लिए रहेगा फिल्म में दो रात पे। और गाने के बिल्कुल इस प्रकार है, ये रहे इसमें जुल्फें ये सरगती आंखें।
1: जी जी, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है। चलिए तो फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: चलिए अब बात करते हैं असम से विमल जी से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: विमल जी से बात हो रही है?
1: जी मैम, हम विमल जी असम जुनाई मिश्रा की छपरी से विमल बसु बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी मैम।
0: जी विमल जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, मेरा दुकान है, सिलाई का काम करता हूँ मैं।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं। सिलाई करते करते गाने भी सुनते होंगे?
1: जी मैम, सिलाई करके दुकान में रह के गाना भी सुनता है। आज फिर मैम ये क्रिकेट खेल हम लोग का हो रहा है, खेल का बीच में।
0: अच्छा, तो मतलब खेल के साथ साथ गीत सुनने का मौका मिल जाता है आपको?
1: जी मैम, आज आया है, आज हम लोग का खेल है, खेल चल रहा है, इधर आया है खेलने के लिए।
0: अच्छा, खेल भी देख रहे हैं साथ में गीत भी सुनेंगे, है ना?
1: जी मैम, हम लोग खेल रहे हैं।
0: जी वैसे आप कैसे गीत पसंद करते हैं, नए पुराने?
1: जी मैम, हमको जैसे मीडियम साइज का गाना पसंद कर रहे हैं, जैसे आलका इंडिया हो गया, कुमार सानू हो गया, राधा पोडवाल, ये लोग का सब अच्छा लगता है मैम।
0: जी चलिए, अच्छी बात है। तो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, हमको सुना दीजिए अनारी मूवी का जो भी है गाना सुना दीजिए।
0: जी इसका हम बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवा देंगे आपको, छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी, ठीक है?
1: ये गाना हम दोस्तों के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ मैम।
0: हाँ जी, जरूर जरूर।
1: सबसे पहले है ओम्बल बसुमतारी है, फाल्कन मुंडा, रमेश पत्र है, और है हम लोग का परमेश प्रजापति, राकेश पूरम वर्मा, पुरुषोत्तम भैया, और है शिवल लुहार भैया, और भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सिसोदिया, और दिल्ली से है धर्मवीर, जितना लाइव सुन रहा है सब के लिए डेडिकेट है मैम।
0: जी तो फिर चलिए सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: नमस्कार मैडम। जिला क्षेत्रीय
0: जी इंद्रभान जी को ही मैंने कॉल लगाया था। जी इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, अभी उसमें मैं भी अच्छा हूँ। जाने के टाइम मेरा मौसम यहाँ पर बादल किया हुआ है, पानी भरा और धूप भी है, बादल भी है। और सबसे पहले उसको गणेश पूजा आने वाले जय भारतीय शुभकामना और दिसंबर के महीने साथ में जल्दी कपड़े पसंद की बता सकते हैं। तुम हमें हमसे बढ़कर कौन देवा हमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर कौन गायक मोहम्मद रफी चैनल की सबसे पहले आपको को पूरी आकाशवाणी जुड़े जुड़े सभी लोगों को ऐसे पूरा जिनके रिश्ते करें तो उनकी शैली को सभी भाई बुढ़ के स्टाफ कर्मचारियों को सभी उद्योग भाइयों को सभी स्टाफ कर्मचारियों को पूरे भाई पहुँचाने के लिए अच्छा आपको डिटेल किया हूँ, जरूर सुना दीजिएगा कौन सा उनकी मतलब।
0: तो चलिए फिर, आपने तो ए टू जेड कह दिया है, क्या सुनना है आपको? सब कुछ हमसे बढ़कर कौन मूवी का बोल रहे हैं आप ना?
1: जी मैडम,
0: उसका कौन सा गीत बोल रहे हैं आप? हमसे बढ़कर कौन,
1: देवा और देवा गणपति देवा
0: गणपति बप्पा मोरिया जी। ठीक है, तो फिर चलिए फिर सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: अब लगाते हैं अगला कॉल हमारी दोस्त दिया को, जो कि रहने वाली है आसम से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: शायद उनसे संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, सुनवाते हैं हम ये प्यारा सा गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest Common Service Center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award.

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन

0: प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तीन श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं राम बाबू जी से, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स
2: जी, नमस्कार मैम।
1: बहुत बहुत नमस्कार। राम बाबू जी से बात हो रही है?
2: हाँ जी, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, कोलार रोड भोपाल से, राम बाबू मालवीय
1: जी। राम बाबू जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको। मेरी आवाज आ रही है?
2: जी बराबर आ रही
1: है जी, लेकिन आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है, तो आप बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, जल्दी से हमें बता दीजिए।
2: फिल्म दूल्हे राजा का सुनवा दीजिए, कहा राजा भूत कहा गंगूरे।
1: जी, ये गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
2: जी हमारे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा जी, और दोस्त तो बहुत सारे, जितने भी सुनने वाले सभी दोस्त है
1: जी।
2: जी
1: तो चलिए फिर सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: हाँ जी बिल्कुल।

0: चलिए अब जुड़ते हैं योगेश मिनारिया जी से, जो कि एमपी इंदौर के रहने वाले हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो, योगेश मिनारिया जी से बात हो रही है।
1: जी जी मैम।
0: योगेश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
1: जी जी आ रही है मैम।
0: योगेश जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम लोग वायरिंग का काम है, कंपनी है हर्ज इलेक्ट्रॉनिक्स,
0: जी
1: तो वायरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो अभी आप फ्री बैठे हुए हैं, है ना?
1: जी मैडम, अभी टी टाइम है, चाय का टाइम है अभी।
0: जी
1: अभी
0: जी, वैसे इंदौर का क्या हालचाल है?
1: मैडम इंदौर का तो हालचाल मैडम, इस बार बारिश बहुत कम हुई है, 50% हुई है खाली, मुश्किल है।
0: वैसे आपको कैसे मौसम पसंद है, बारिश का या ठंड की या गर्मी की?
1: मौसम तो सभी अच्छे रहते हैं, सभी टाइप के होना चाहिए, बाकी ये ठंड का और बारिश का दोनों ठीक लगता है, गर्मी में तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
0: जी, तो अभी अभी का मौसम क्या कैसा है वहाँ का?
1: बारिश मैडम बहुत उमस है, धूप है और उमस है।
0: जी,
1: बारिश हुई नहीं मैडम, तो ऐसा ठंडक हुई नहीं है एटमोसफेयर में अभी।
0: तो चलिए फिर, इस मौसम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कुछ कुछ होता है फिल्म का है, तुझे याद ना मेरी आई।
0: जी, ये गीत तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, आप किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: कंपनी में काफ़ी सारे हैं, नानक राम है, जितेंद्र उपाध्याय है, बंटी है, योगेश पाटिल है, रामचंद्र है, भूषण है, मोनू है, दीपक है, और भी काफ़ी सारे हैं, सभी सुनते हैं मैडम।
0: तो चलिए फिर सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी मैम, धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

दोस्तों अब घड़ी इशारा कर रही है इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का। चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि वक्त बुरा है तो बदल भी जाएगा, हर अंधेरा एक दिन ढल जाएगा, तो बस अपने हौसलों को ज़िंदा रखना, क्योंकि हर सपना एक दिन ज़रूर पूरा हो जाएगा। इस प्यारे से विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाज़त।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय हुआ है दोपहर के 3:30। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

यूं ही गाते रहो कार्यक्रम का आज का सफर आज आप तय कर रहे हैं शबाना के साथ। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि खुला आसमान हमें हमेशा आज़ादी का एहसास दिलाता है और बादलों के साथ सपने भी जैसे उड़ने लगते हैं। जिंदगी भी एक खुले आसमान की तरह होती है जहां हम अपने सपनों को खुलकर जीते हैं। बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ जिंदगी अच्छी लगती है।

दोस्तों, कभी कभी किसी खास इंसान के आने से जिंदगी का हर पल और भी खूबसूरत हो जाता है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में नई खुशी आ जाती है, जैसे हर तरफ बहार सी छा जाती है और ये एहसास बस दिल को छू जाती है।

दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है उसकी कद्र करना ज़रूरी है, क्योंकि खुशियाँ छोटी हो या बड़ी उन्हें महसूस करना चाहिए। किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अपने आप में ख़ास होती है।

दोस्तों, कुछ एहसास वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि हर बार और भी गहरे हो जाते हैं। किसी की याद कभी मुस्कान बन जाती है तो कभी दिल को एक खूबसूरत सा एहसास दे जाती है, और ये खूबसूरत एहसास प्यार में बदल जाती है।

दोस्तों, कुछ बातें दिल में रह जाती है और लफ्ज़ों तक नहीं आ पाती है। कभी एक छोटी सी बात भी दिल को बहुत खुशी दे जाती है और अपनों का साथ अगर हो तो ज़िंदगी हसीन सी बन जाती है।

दोस्तों, हर पल को खुशी से जीना सीखिए, हर रिश्ते को दिल से निभाना सीखिए। जिंदगी छोटी सी है, इसलिए इसे मुस्कुराकर बिताना सीखिए। दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। उम्मीद है आज का ये सफर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर छोड़ गया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था। कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी।

नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार माँ को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर माँ इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता

समीर भी कहीं न कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती। खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। ये सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा, एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

0: चर जाए दिन।
1: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा। वो एक पल को ठहर गई, उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है, आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला, पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया, उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आपका हमारी दूसरी सभा में स्वागत है। प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणगम तमिल अमदम वणकम नेयर्गले।

0: नमस्कार किसान साथियों, मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम कृषि जगत में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नेक विचार के साथ। तो आइए सुनते हैं आज का क्या है नेक विचार। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। अर्थात सच्ची मदद हृदय से होती है, बातों से नहीं, और सच्ची भावना मौन में होती है, शोर में नहीं। तो आइए किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है, बीजू नारियलों के लिए चुने गए फलों में गिरी का वजन कितना होना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। बीजू नारियलों के लिए चुने गए फलों में गिरी का वजन कितना होना चाहिए। किसान साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: बदलेगा किसान तो बदलेगा देश का हर बाजार। जी हाँ साथियों, तो आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं आज की चर्चा की ओर और जानते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जो देश की कृषि मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम और व्यापक बाजार की पहुंच मिलती है। यह पहल किसानों को सशक्त बनाने और कृषि व्यापार को डिजिटल रूप से आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ किसान भाइयों, राष्ट्रीय कृषि बाजार में पूरी तरह से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। एक बार पंजीकरण होने के बाद ही किसान अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं। पंजीकरण

0: के बाद मंडी में फसल बेचने की 5 प्रक्रिया होती है। पहला है, जब आप अपनी फसल लेकर मंडी के गेट पर पहुंचते हैं तो कर्मचारी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर एक लॉट नंबर जनरेट करता है। दूसरा है, आपकी फसल का एक सैंपल लिया जाता है और लैब में उसकी नमी, सफाई और क्वालिटी की जांच की जाती है। यह रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है ताकि व्यापारी उसे देख सके। तीसरा है, देश भर के व्यापारी कंप्यूटर या मोबाइल ऐप पर आपकी फसल की क्वालिटी रिपोर्ट देकर अपनी अपनी बोली लगाते हैं। चौथा है, जो व्यापारी सबसे ऊंची कीमत लगाता है उसका भाव आपको दिखाया जाता है। अगर आप उस कीमत से संतुष्ट है तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर कीमत पसंद नहीं आई तो आप मना भी कर सकते हैं। और पांचवा है, मंजूरी के बाद फसल का वजन किया जाता है और कुछ ही घंटों के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे किसानों की आर्थिक आजादी का मार्ग है। जब देश का किसान सशक्त होगा तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। एक राष्ट्र एक बाजार, ई नाम ने पूरे देश की मंडियों को एक सूत्र में पिरोया है। साथियों, अभी आप राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में चर्चा सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: सोचिए, अगर आपकी रसोई और खेत से निकलने वाला बेकार कचरा आपकी फसलों के लिए अमृत बन जाए तो कितना अच्छा हो। जी हाँ, यह मुमकिन है, बस इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं और सुनते हैं कंपोस्ट बनाने की सही तकनीक के संदर्भ में डॉक्टर घनश्याम पांडे जी से की गई यह खास बातचीत।
2: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे कंपोस्ट बनाने की सही तकनीक के बारे में। कंपोस्ट क्या है, इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और कंपोस्ट कैसे बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों के बारे में आपको जानकारी देंगे डॉक्टर घनश्याम पांडे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में आपसे जानें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कंपोस्ट है इससे किसान भाई क्या समझे।
3: कंपोस्ट जो है, जैसे कि हमारे आम किसान भाई की एक धारणा है, जैसे गोबर की खाद है या जो वो प्रोडक्ट है, आप समझें कि जो उनका घर का हाउस होल्ड का जो वेस्ट मटेरियल है या फॉर्म का है या सब्जियों का है और गोबर की खाद है, ये सबको मिला करके इकट्ठा करके किसान भाई एक जगह इसकी डंपिंग करते हैं, एक ढेर बना देते हैं और उसकी वैज्ञानिक सिफारिश यदि हम करें तो उसमें एक स्टैंडर्ड साइज होता जो हम लोग रिकमेंड करते हैं और उसमें साइज में उसको गड्ढा बना करके और उसमें

0: इन सब मटेरियल्स को इकट्ठा कलेक्ट करके उसमें डालें, और ये होना ये चाहिए बरसात के पहले, रेनी सीजन के पहले। और रेनी सीजन के से मतलब ये है कि इसके पहले गड्ढा तैयार रहेगा, सारे मटेरियल उसमें डालेंगे, तो जो पहली हमारी जो फर्स्ट सावर होगी रेनी सीजन की, उसमें इसको अपना रख करके इसका टर्निंग कर सकते।
1: तो मतलब ये
0: और
1: जो सड़ी हुई जो खाद बन जाती है उसे
0: जी,
1: कंपोस्ट
0: ये
1: कहते हैं।
0: उसको जो वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक जो ह्यूमस जिसे कहते हैं, वेल डिकम्पोज डार्क टू ब्राउन इन कलर, मतलब
1: अच्छा,
0: काले रंग से भूरे रंग का जो होगा पदार्थ, उसको वेल डिकम्पोज जो मतलब सड़ा हुआ जो विघटित पदार्थ है उसको हम जो है कंपोस्ट कहते हैं।
1: अच्छा, मतलब कोई भी जैविक पदार्थ हो सकता है, ऐसा
0: जी
1: पत्तियां भी हो सकती है, गोबर भी हो सकता है,
0: जी
1: मलमूत्र वगैरह
0: जी
1: जो भी है,
0: जी
1: सबका सड़ा हुआ जो होता है पूरी तरह से कंपोस्ट कहते
0: जी
1: हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर सलाह दी जाती है किसान भाइयों को कि अधिक से अधिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करें ताकि जमीन की भौतिक दशा ठीक हो, उर्वरकता शक्ति बनी रहे, ये तमाम सारी बातें बताई जाती है, तो
0: जी
1: इसके पीछे बात।
0: अब देखिए, इसमें ऐसा है कि एक आम धारणा है, यदि आप हम पीछे थोड़ा सा नजर डालें तो 1960 के पहले अगर आप देखें, यद्यपि उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी थी और हरित क्रांति आई 60 से 65 के दौरान, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अच्छा कार्य किया, अच्छी अच्छी नई किस्में पैदा की गई, उसमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। लेकिन दो चीजें यहाँ होती हैं, एक तरफ तो आप देखें हमें पैदावार तो खूब मिली, हम सेल्फ सफिशियंट हुए खाद्यान्नों में, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा हम विचार करें तो हमारी जो मिट्टी की दशा, जो भौतिक दशा है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर हुई है। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की बहुतायत मात्रा उपलब्ध नहीं है, कहने का मतलब न्यूट्रिशनली जो सॉयल अंडमान की है वो पुअर है, तो इसके लिए हमें यह करना होता है कि हम बाहर से इसमें खाद्य पदार्थ मिलाएं। हमें यह मालूम है कि पौधों को लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास प्रमुख हैं, और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। तो सबका जो कहने का जो निचोड़ है, जो उपसंहार है, कंक्लूजन यही है कि हमें खाद्य पदार्थों को जो न्यूट्रिएंट हैं वो जमीन को देना है, और जमीन को जो हम देंगे तो जमीन में ताकत होगी, और जमीन में ताकत होगी तभी उससे हम फसलें पैदा कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में उनकी जो प्रोडक्टिविटी हमारी होगी वो लेंगे। और जहां तक इन द्वीपों की बात हुई, तो दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, एक तो फ्लैट लैंड होती है और एक आपकी पहाड़ी भूमि होती है। तो उसमें यह पाया जाता, पहाड़ी भूमि ज्यादातर हम देखते हैं तो नारियल है, सुपारी है, और हमारे स्पाइसेस हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। और अगर इस तरह की जमीन में देखें तो हमारे फ्लैटलैंड्स में सब्जियां हैं और धान है। और सुनामी के बाद यदि हम देखें तो हमारी जो भूमि की भौतिक दशा है, यूं कहें कि जो सॉयल है, ये इसमें काफी इसका प्रभाव पड़ा है। और हम तो यहां तक कि अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं संदेश के माध्यम से कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग वो कम करें, बल्कि गोबर की खाद का प्रयोग या कंपोस्ट खाद का प्रयोग या हरी खाद का प्रयोग, इन खादों के प्रयोग की तरफ ज्यादा ध्यान दें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किसानों को बताया जाता है कि कंपोस्ट ज्यादा इस्तेमाल में लाएं, तो कंपोस्ट और जो रासायनिक उर्वरक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, आपने
0: जी
1: साफ बताया कि जमीन में पोषक तत्व कम है तो
0: जी
1: इसके लिए ऊपर से हमें देना होता है,
0: जी
1: तो इन दोनों के इस्तेमाल करने से क्या अलग अलग प्रभाव होते हैं?
0: इसमें ऐसा है कि जैसे आप इसका छोटा सा उदाहरण आप देखें, यदि हम आप बाजार में जाते हैं और देखते हैं आजकल जो हमारी सब्जियां आ रही हैं, आप देखेंगे सब्जियां बहुत अच्छी हैं और सब्जियों में चमक है। तो एक तरफ अगर इसका हम विश्लेषण करें तो एक लोगों के अंदर, हमारे किसानों के अंदर और सभी के अंदर, एक जन सामान्य एक माइंडसेट लोगों को बन गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ये रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया नाइट्रोजन के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, स्वाभाविक वनस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का काम है। ये हमारे जो केमिकल रिएक्शन है वो इसमें यही है कि नाइट्रोजन का काम है वनस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अभी ये ध्यान देना कि अधिक से अधिक मात्रा नाइट्रोजन का प्रयोग करें, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक हो, पैदावार अधिक हो, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हम आजकल ये भी देखते हैं बाजार में ऑर्गेनिक का डिमांड ज्यादा है। यदि हम फल फूल का देखें, सब्जियों को देखें, तो लोग ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जो हमारी कार्बनिक मतलब
1: जैविक
0: प्रोड्यूस
1: खादों
0: है,
1: से जो बना
0: जैविक
1: हुआ।
0: खादों से जो बना हुआ, इसका यही अंतर है। और रासायनिक खाद और जो ये कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद, इसका सबसे बड़ा अंतर यह है कि रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग है वो तो तुरंत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू यह है कि उसका कहीं ना कहीं जो चूंकि रसायन है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मे बी इन लॉन्गर रन हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जहां तक कंपोस्ट की बात है या गोबर की खाद का या जैविक खादों का प्रयोग है, हम अगर खेती में करें, अपने जमीन में मिलाएं और जिससे पैदावार लें, मैं ये समझता हूं कि इसका कोई ह्यूमन पर इसका इल हेल्थ
1: प्राकृतिक है
0: जी, तो इसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसको मेरे ख्याल से एक उदाहरण के तौर पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हम में, हम इंसानों में अगर कुछ कमजोरी होती है, या तो हम सीधे विटामिन की गोलियां ले सकते हैं, फल सब्जियां खा सकते हैं,
0: जी
1: विटामिन की गोली जैसे आपने कहा तुरंत
0: जी
1: असर होगा
0: जी
1: लेकिन वो ज्यादा दिन तक असर बना नहीं
0: बना
1: रहेगा,
0: नहीं रहेगा
1: जबकि
0: जी
1: फल सब्जियां संतुलित आहार
0: जी
1: खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: जी
1: कंपोस्ट अगर किसान भाई बनाना चाहते हैं,
0: जी
1: अक्सर किसान भाई बनाते भी हैं, जैसे
0: जी
1: आपने कहा कि इकट्ठा कर देते हैं, डाल देते हैं,
0: जी
1: सड़ा देते हैं,
0: जी
1: लेकिन एक
0: जी
1: वैज्ञानिक तरीके से, सही तरीके से बनाना चाहें
0: जी
1: तो उन्हें क्या क्या करना होगा?
0: किसान भाई बहनियों की आप यूँ सोचिए कि किचन में भी आप देखें तो हर एक घर में कहीं ना कहीं छोटा सा जिसमें ये सब्जियों का ढेर है, सब्जियों का जो मतलब किचन वेस्ट है या वेजिटेबल का वेस्ट है, फार्म का वेस्ट है, गोबर है, या कि किसी के पास जानवर रहते हैं।

0: उनके अपना जो उनका मल मूत्र है सब इकट्ठा करके एक जगह ढेर कर दिया जाता है। ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ। जब हम कोई बात करते हैं अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी इल्ड के लिए, कि जमीन की हमारी उर्वरा शक्ति जो सॉइल फर्टिलिटी है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, तब हम बात करेंगे वैज्ञानिक सिफारिश की।
1: अच्छा
0: तो हमारी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो ये है कि 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, इतना जो इस स्टैंडर्ड साइज है हमारे गड्ढे की, कंपोस्ट पिट की। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये साइज आपका यही होना चाहिए जो मैंने बताया, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसके लिए कई विधियां है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं, बंगलोर विधि है, इंदौर विधि है, तमाम तरह की विधियां हैं। सबकी साइज अलग है, सबके सिस्टम अलग है, सबकी मेथोडोलॉजी अलग है, लेकिन सबका निचोड़ यह है कि कम समय में कैसे अच्छे से अच्छे हम न्यूट्रिएंट वाला अच्छा कंपोस्ट हम प्राप्त करें, यह बात आती है। तो तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक निचोड़ तरीका बनाया गया कि अगर स्टैंडर्ड हमारा प्लॉट साइज होगा, जिसके लिए हमारा, आप ये देखें बल्कि इन द्वीपों में हमारा नारियल विकास बोर्ड है जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी हैं, तो इनकी एक टीम बनती है और एक टीम जाकर के हमारे किसानों के द्वीप में इनका दौरा करते हैं, देखते हैं कि जो हमने सिफारिश की है उस स्टैंडर्ड साइज का इनका गड्ढा है कि नहीं। तो गड्ढा अगर उस नॉर्म का है तो उनको देख करके और हम फिर उनको रिकमेंड करते हैं, बाद में अपना वो सब मटेरियल उसमें डालते हैं इकट्ठा करके। और लगभग मैं समझता हूं कि ये 4 महीने में, 4 मंथ्स लगते हैं प्रोसेस में, और 4 महीने में कंपोस्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा।
1: जो गड्ढा बनाते हैं, जो पीट आपने कहा कि 5 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर गहरा स्टैंडर्ड है, तो इसको पक्का वगैरह कुछ करने की जरूरत
0: नहीं? नहीं, यदि पक्का करें तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसा बहुत अच्छा बात आपने कही, इसमें लोग ऐसे कच्चा बना देते हैं और पक्का बना देते हैं। देखिए दो बातें इसमें है, कच्चा बनाएंगे और पक्का बनाएंगे दोनों चीजों में अंतर है। कच्चा बनाने में क्या, बरसात होती है, मान लीजिए बहुत ज्यादा आपका ऐसा है कंपोस्ट, आपने ऐसे जगह आपने सिलेक्शन ऑफ साइट किया वे टू जहां पर आपको कंपोस्ट पिट बनाना है, मान लीजिए जल निकास की व्यवस्था नहीं है, रेनी सीजन में पूरा पानी इकट्ठा होकर के और रन ऑफ होकर के सब उसी गड्ढे में आ जाता है, तो क्या करेंगे, तो हमारा कंपोस्ट का तो नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों दशाओं में हमको देखना पड़ता है। तो हमारी स्ट्रक्चर ये होता है कि यदि पक्का हो तो अच्छी बात है।
1: और जैसे आपने कहा कि जगह का स्थान भी, मतलब
0: सोच समझ के इसका चयन करना है जहां की ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो,
1: जल निकास
0: की। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और महत्वपूर्ण एक फैक्टर है जो कि कंपोस्ट पिट जहां भी बनाए वहां अच्छी तरह से देख लें कि आपका ये ड्रेनेज का वहां अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जल निकास
1: तो
0: की।
1: एक बार ये जो गड्ढा है वो किसान भाई बना लें
0: जी,
1: तो इसके बाद कचरा डालने की भी कोई विधि हो?
0: कचरा डालने की इसमें ऐसा है कि जो भी इकट्ठा करते हैं लोग अपना सामान्य तरह से लेते हैं, डालते रहते हैं, गोबर है, गाय हो, भैंस हो, मतलब इस तरह का। बात आपने कही कि कैसे इनको इकट्ठा करके उसमें डाला जाए, कंपोस्ट में भी कई विधियां हैं। आजकल आपने देखा होगा वर्मी कंपोस्ट का प्रचलन ज्यादा चल रहा है, केचुआ का, क्वायर पिथ का ज्यादा चल रहा है, अर्बन कंपोस्ट है, रूरल कंपोस्ट है, हमारे गांव का कंपोस्ट है, तो इसमें कई सारे हैं। लेकिन मोटा इसका जो इन जनरल मैं आपको बताऊं, उसका सबका जो एक उपसंहार है, कंक्लूजन है, वो यही है कि सारे को मिलाकर के एक जगह इकट्ठा करके आपको डालना है और इसकी एक परत लेयर आपको बिछा देनी है ऊपर, ढक
1: अच्छा।
0: देना, कवर कर देना है। इसमें दो प्रोसेस है, एक तो एनएरोबिक होता है और दूसरा एरोबिक होता है। एरोबिक वाले में ये होता है कि एरोबिक प्रोसेस में आपका खुला छोड़ देते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे हिप बना करके सारा डंपिंग कर देंगे इकट्ठा मटेरियल और उसको खुला छोड़ देंगे। तो कहने मतलब एरोबिक का मतलब उसमें जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और डिकम्पोजिशन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना बढ़िया डिकम्पोजिशन होगा उतना न्यूट्रिएंट वाला हमारा अच्छा कंपोस्ट बनेगा। और जो इसका कंपोस्ट की हमारी परसेंटेज होती है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की, वो है 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% आपका फास्फोरस और 0.5% हमारा पोटाश। कहने का मतलब एनपीके 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस एंड 0.5% K2 यानी पोटाश। एनपीके ये मात्रा हमारी जनरल है, एवरेज है, और ये मात्रा हमारी वैरी करेगी। वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे उसमें अलग होगा वर्मी कंपोस्ट का हमारा, अर्बन का अलग होगा, रूरल का अलग होगा,
1: जो हिसाब से जो मटेरियल डालें
0: जी, जी, जी, जो रॉ मटेरियल, कहने का मतलब जो हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, जिस क्वायर पिथ की बात आ गई हमारे प्लांटेशन का, आपने कोकोनट हस्क का देखें आप, क्वायर पिथ का, उसका भी कंपोस्टिंग का होता है। और कहने का जो अभिप्राय है ये, इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रमोट दी मोर कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमारा जो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए, हम लोग जैविक खादों की तरफ ध्यान दें, जिससे हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी वो बनी रहे।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि दो प्रकार से सड़ाया जा सकता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और एक
0: ढक करके कवर करके जी।
1: तो हमारे द्वीपों की स्थिति में कौन सी रीति?
0: मैं समझता हूँ ढका वाला अच्छा, कवरिंग वाला। अगर कवर करके बनाते हैं तो उसका ये फायदा ये होगा कि उसमें टेम्परेचर आपका अधिक होगा, आपका ये डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। और डिकम्पोजिशन के चूंकि बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और ये हम सभी जानते हैं कि इसमें प्रकार के जो आपके छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, मे बी बैक्टीरिया या अदर जो हमारे फंगल या जो भी चीजें हैं इस तरह का, ये सब इसमें काम करती हैं हमारे डिकम्पोजिशन को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो जितने ज्यादा हमारी ये बैक्टीरिया या माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसमें प्रेजेंस होगी, उतना अच्छा इसका विघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और उतना बढ़िया आप देखेंगे इसका ह्यूमस, इसका जो पदार्थ बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं, और वो डार्क कलर का होता, ब्राउन कलर का, डार्क ब्लैक टू ब्राउन कलर, और उतना अच्छा खाद होगा, और वो ह्यूमस को ही डाला जाता खेत में अपने,
1: मतलब पूरी तरह से सड़ी हुई खाद ही डालनी
0: चाहिए। और एक बात और बता दें यहां, जो सबसे बड़ा फायदा हमारे

0: ये कार्बनिक खाद का विशेषकर कंपोस्ट का है, ये जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉयल है, जो भूमि की जो भौतिक दशा है उसमें ये सुधार करता है। जो हमारा सॉयल टेक्सचर है, आप जो समझिए कहते हैं ना कि ये मिट्टी हमारी सैंडी है, क्ले है, लोम है, दोमट है, बलुई है, इसका जो मृदा कणों का जो आकार है ये इससे बड़ा बहुत फायदा होता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, ये इस तरह का काम करता है, एक बफरिंग एक्शन का काम करता है। जैसे इन द्वीपों की हमारी जो मिट्टी है, कहा जाता है कि एसिडिक इन नेचर, जो हमारी अम्लीय मिट्टी है, और बाद में देखा जाए सुनामी के बाद तो कुछ थोड़ा सा नमक का पानी जो सलाइन वाटर इंट्रूशन हुआ फील्ड में, धीरे धीरे धीरे अपना उसका थोड़ा सा सलाइन मतलब हुआ, साल्ट का हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल दशा में हमारे आ रहा है और पुनः हम धीरे धीरे वही उन्हीं चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे आवश्यक है कि ये कंपोस्ट जो है, मैं तो समझता हूँ हमारे किसानों के लिए, इन दीपों के लिए एक वरदान के रूप में, बूंद के रूप में है कि हमारे किसान भाई कंपोस्ट का प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जमीन के लिए ज्यादा अच्छा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो सड़न की जो प्रक्रिया है मोटे तौर पर कितने दिनों में पूरी हो जाती है?
0: ये आपका ऐसा है 4 महीने में, आप 4 मंथ्स आपका है, 4 महीने में आपके ये कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है और एक अच्छा खासा हमको कंपोस्ट प्राप्त हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन इसके बीच में हमको क्या करना है, जैसे 1 महीने के बाद हुआ और जैसे मैंने बताया कि ये बरसात शुरू होने के पहले आपका गड्ढा तैयार होना है, मतलब बिफोर द रेनी सीजन, और इसके बाद जैसे आने के बाद तो कम से कम 1 महीने के बाद जैसे है उस पर आपका यूरिया का घोल बना करके, यूरिया का जैसे है, या कभी कभी ये भी करते हैं हमारे काऊ डंग का स्लरी बना लेते हैं, काऊ डंग का गोबर का स्लरी बना करके उस पर लेप लगा देते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि इससे हमारा जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, ये उसमें तीव्रता आ सके और ये जल्दी से जल्दी ये बन सके,
1: सड़न तेज
0: हो सके, इसका ये अभिप्राय है।
1: तो डॉक्टर साहब, पूरी तरह से सड़ी हुई जो कंपोस्ट की खाद होती है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है
0: जी,
1: लेकिन किसी कारणवश अगर खाद पूरी तरह से सड़ी नहीं है, उसका इस्तेमाल अगर खेत में करे तो इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है?
0: देखिए, बहुत सही बात आपने कही। इसमें ऐसा है कि जब पूरी तरह से सड़ी नहीं डालेंगे तो सबसे बड़ी चीज हमारा आप डालेंगे, सामान्य तौर से हमारे किसान भाई जानते हैं, अभी मान लीजिए गोबर है, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएं, गोबर को डाल दें तो आप देखेंगे उसमें टर्माइट का अटैक हो जाएगा, दीमक लग जाएंगे या कीड़े प्रकोप हो जाएंगे, तो हमारे पेस्ट एंड डिजीज के ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी प्रक्रिया वैज्ञानिक सिफारिश से की जाए, कहने का मतलब वेल डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो सड़ा हुआ खाद है, उसी का प्रयोग करें तो बेहतर होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी सारी बातें बताई इस पर किसान भाई जरूर ध्यान देंगे और एक अच्छी तरह से कंपोस्ट बनाएंगे, जो तकनीक आपने बताई इसका इस्तेमाल करेंगे
0: जी।
1: तो डॉक्टर पांडे, आप कार्यक्रम में आए, बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप कंपोस्ट बनाने की सही तकनीक के संदर्भ में डॉक्टर घनश्याम पांडे जी से की गई यह खास बातचीत सुन रहे थे।
3: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स। Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जैसे गगन के।
1: अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। उम्मीद है इस गीत ने आपके मन को तरोताजा कर दिया होगा।
2: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: किसान साथियों, जैसा कि कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बीजू नारियलों के लिए चुने गए फलों में गिरी का वजन कितना होना चाहिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजू नारियल ऐसे पौधों से चुने जाने चाहिए जिनके फलों में गिरी का औसत वजन 150 ग्राम हो। साथियों, आज के इस सवाल जवाब से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और यह सही जानकारी आपके बहुत काम आएंगी। बस इसी तरह नई नई बातें सीखते रहिए और अपनी खेती को मुनाफे की खेती बनाते रहिए।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी है, लेकिन क्या करें, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज की जानकारी आपके बहुत काम आएंगी। मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने इस दोस्त रागनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, सेवा संकल्प अभियान, राष्ट्रीय पोषण माह और टीबी मुक्त भारत ऐप

0: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एक कठोर, पारदर्शी और ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित करता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। इस अवसर पर द्वीप समूह से पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मायाबंदर के शिक्षक जे प्रकाश राव को सम्मानित किया गया। उन्होंने आकाशवाणी संवाददाता के साथ बातचीत में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र में और बेहतरीन कार्य करने की उम्मीद जताई।
1: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत भावुक और अभिभूत कर देने वाला क्षण है। मैं स्वयं को सचमुच विनम्र और कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। यह सम्मान केवल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह मेरे परिवार, विद्यार्थी, सहकर्मी और मुझ पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम एवं सहयोग का प्रतिबिंब है। मैं स्वयं को धन्य, गौरवान्वित और अत्यंत जिम्मेदार महसूस कर रहा हूँ कि आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में और अत्यंत समर्पण एवं निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करूं। यह पुरस्कार मुझे याद दिलाता है कि ईमानदारी और निष्ठा से किए गए प्रयास, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो, विद्यार्थी के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में

0: एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य

0: शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्त दान शिविरों के आयोजन से होगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती है। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी 9वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पोषण एक स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध समाज की आधारशिला है। इस वर्ष के पोषण माह का विषय हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है। यह महीने भर चलने वाला अभियान आहार में विविधता, पर्याप्त प्रोटीन सेवन, ताजा भोजन, सामुदायिक स्वामित्व, शुरुआती बाल विकास और PMMVY के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य पर केंद्रित है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से आहार विविधता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य,

0: प्रारंभिक बाल विकास तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने अभिभावकों, युवाओं और समुदाय से पोषण माह में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। श्री जोशी ने 8 अक्टूबर 2017 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का पदभार संभाला था। 62 वर्षीय डॉक्टर शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होना था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉक्टर शर्मा की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। डॉक्टर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरे उतरने की बात कही।
1: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: दक्षिण अंडमान जिले में 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश पूजा महोत्सव की तैयारियों और कानून व्यवस्था के संबंध में जिला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लाइन विभागों के अधिकारियों के साथ साथ गणेश पूजा समितियों के अध्यक्षों और सचिवों ने भाग लिया। आयोजकों को अग्निशमन सुरक्षा, यातायात, कानून व्यवस्था, बिजली और स्वच्छता से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आयोजकों और प्रतिभागियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है। पूजा समितियों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि शराब या किसी भी प्रकार के नशे के प्रभाव में किसी भी व्यक्ति को विसर्जन जुलूस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग पूरी तरह से बंद करना होगा। उल्लंघन करने पर म्यूजिक सिस्टम और संबंधित वाहन को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के समय प्रतिमूर्ति केवल सीमित संख्या में लोगों को ही विसर्जन स्थल में प्रवेश की अनुमति होगी। समिति को इसका सख्त पालन सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक डिजिटल पहल टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया है। टीबी मुक्त भारत ऐप एक सजग और सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे टीबी से संबंधित जानकारियों और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एप्लीकेशन उपचार मार्गदर्शन, दवा सेवन सहायता और फॉलो अप सहायता प्रदान करके टीबी मरीजों की उनके इलाज के दौरान मदद करता है। मरीज केंद्रित सेवाओं के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए इसे निक्षय जैसे मौजूदा प्रणालियों के साथ भी एकीकृत किया गया है। आम नागरिकों, संस्थानों, कॉरपोरेटर्स और संगठनों को ऐप के जरिए निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करने और टीबी मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें पोषण संबंधी सामाजिक या वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐप में खुशी आपकी ई संघनी नाम से एक इंटरैक्टिव चैटबॉट भी शामिल है जिसे टीबी से जुड़ी तुरंत विश्वसनीय और आसान जानकारी देने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय ने आम जनता से टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 ने नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने अपने जिलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन क्षमता, परंपराओं, व्यंजनों, कला और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया है। यह चैलेंज प्रसार भारती के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह पहल पायलट चरण के तहत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इसके तहत पायलट सबमिशन विंडो को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माई वेब्स सेक्शन पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। कृषि विभाग की ओर से पूरे द्वीप समूह में किसान आईडी बनाने और पात्र किसानों को किसान रजिस्ट्री में नामांकित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान बनाना है ताकि उन्हें पीएम किसान, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कृषि सेवाओं का सीधा लाभ मिल सके। विभाग का लक्ष्य हर पात्र किसान का पंजीकरण सुनिश्चित करना है ताकि कोई भी सरकारी लाभ से वंचित न रहे। इस अभियान के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। यदि किसानों के भू अभिलेख

और पहचान पत्र के नाम में कोई अंतर है तो किसान कृषि उपडिपो के प्रभारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। विभाग ने कहा कि जिन किसानों का रजिस्ट्री नामांकन पूरा नहीं होगा उन्हें आगामी रबी सीजन से सब्सिडी वाला उर्वरक, कृषि सामग्री और पीएम किसान की किस्त मिलना बंद हो सकती है। कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से जल्द से जल्द अपने नजदीकी कृषि उपडिपो पर जाकर अपना पंजीकरण पूरा करने की अपील की है। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेटा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

अभी आप समाचार तरंगिणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए जीवन शैली में मामूली बदलाव करने से बहुत लाभ मिल सकता है। जाने जीवन शैली बदलाव चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। वर्तमान समय में बहुत से लोग अनिद्रा, रात में नींद न आना, बार बार आँख खुलना, नींद के दौरान बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छी नींद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते या नींद पूरी नहीं होती, तो इससे न सिर्फ पूरे दिन थका हुआ महसूस करते, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। एक अच्छी और पर्याप्त नींद आपको तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करवाती है। खराब नींद के लिए आपकी जीवन शैली की कई गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती है, जो आपको भरपूर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लाने से रोकती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि के सामने अधिक समय बिताना, एक्सरसाइज न करना, संतुलित आहार न लेना और रात को देर से सोना खराब नींद के कुछ आम कारण हैं। अब सवाल यह है कि नींद की गुणवत्ता से सुधार करने और अनिद्रा, खराब और बेचैन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं जीवन शैली में बदलाव और कुछ अच्छी आदतों को दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जीवन शैली बदलाव। सुबह कुछ समय धूप में बिताएं। अच्छी नींद के लिए कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत कुछ समय धूप में बिताकर करें। ऐसे करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पैरों को मालिश करें। अगर रात को सोने से 30 मिनट पहले आप घी गर्म करके इससे पैरों और तलवों की मालिश करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। डिनर में प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार और अच्छी नींद को बढ़ावा देती है, साथ ही हार्मोन्स को संतुलित रखती है। सुबह के समय रात भर पानी में भीगे हुए 4 से 5 बादाम जरूर खाएं, क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। आप शाम को स्नैक्स के तौर पर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में मेलेटोनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और एनर्जी बढ़ाता है। आप सुबह भीगे या सूखे अंजीर का सेवन कर सकते हैं, तो ये अच्छी नींद को बढ़ावा देते हैं और हार्मोन्स को संतुलन में रखते हैं। शाम के बाद चाय या कॉफ़ी न पिए। इनमें कैफीन होता है, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और बेचैन नींद का कारण बनता है। नियमित एक्सरसाइज करने से रात में अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है, लेकिन रात में या सोने से पहले एक्सरसाइज करने से बचे। यह शरीर को शांत और स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपको रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन का पाचन और

चाय पचाया आसानी से हो जाता है। डिनर के बाद कैमोमिली टी पिए, इससे नींद को बढ़ावा देने में और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता की भावना कम होती है, मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है। जीवन शैली में इन सरल बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद न आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की ज़रूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिसे आप ज़्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को बदलें और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाएं। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने ज़रूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें। कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात सही है कि कॉफ़ीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफ़ी आपके नींद में खलल डाल सकती है, इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी के आदि है, तो आपको अपने कॉफ़ी और चाय के सेवन को सीमित करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के एक दो घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है। आजकल लोग सोने जाने से पहले ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से एक घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के बाद आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी।

0: सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। ये आपके शरीर के दैनिक सिर्काडियम रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है। तो ऐसे में धूप में थोड़ा समय जरूर बिताएं। वेल डियर फ्रेंड्स, आई हैव गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। प्लीज फॉलो अवर रूटीन एंड एक्सक्लूड बैड हैबिट्स। विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। अब कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स। 8:00 चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार, गौरव गान। 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं। इसके अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी सवेरे 5:23 पर। प्रभाती वंदना कार्यक्रम सवेरे 5:30 पर। 5:55 पर एग्री टिप्स, जिसमें आप जानेंगे मुर्गियों में बौनेपन का रोग। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम सवेरे 6:15 पर, विषय आवाज। सवेरे 6:30 पर रामचरितमानस गान की 395वीं कड़ी। वतन के गीत 6:40 पर। सवेरे 6:50 पर मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7:00 जन सूचनाएं और 7:05 पर प्रादेशिक समाचार। सवेरे 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रागिनी। वहीं विविध भारती FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मानविका। विषय होगा कुपोषण की रोकथाम में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की भूमिका। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत, जिसमें आप शब्बीर कुमार और जगमोहन को सुनेंगे। तराने सुहाने सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्र संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन। दिन में 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। गीत गुंजन कार्यक्रम दिन में 11:00। गीत अतीत 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों के अलावा विश्व फर्स्ट एड दिवस पर चर्चा। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। 1:10 पर सुगम संगीत, जिसमें फनकार होंगे मेहंदी हसन, मोहम्मद अजीज और मनहर उदास। 1:30 पर आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर होगी पहली सभा समाप्त मौसम की जानकारी के साथ, लेकिन FM 100.9 MHz पर दोपहर बाद 2:30 पर नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 9वीं कड़ी। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण, फिल्मी सॉन्ग।

उस बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में लिटरेचर कार्यक्रम और विश्व फर्स्ट एड दिवस पर चर्चा की जाएगी।

शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ गीत। बिलहुती भूषण बैनर्जी की जन्मतिथि पर चर्चा की जाएगी। किसानवाणी शाम 6:00 श्रीमती ज्योतनाथ से बातचीत का विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। शाम 6:30 पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम में आप सुनेंगे बीती यादें सुनहरी यादों का सफर। इस विषय पर श्री रतन लाल से भेंटवार्ता सुनेंगे प्रस्तुतकर्ता मीना प्रकाश। शाम 6:45 पर लेखक शिव शंकर वशिष्ठ की झलकी आप सुनेंगे बदले हुए चेहरे, निर्देशक F.C. माथुर। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं शाम 7:15 पर। फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया शाम 7:20 पर। 7:30 पर कार्यक्रम युवानी में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर चर्चा की जाएगी। रात 8:00 चित्रपट संगीत। पर रोजगार समाचार और गौरव गान। इसके अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात 10:00।

अभी आप कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

0: इस समय शाम के 7:05 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी।
2: एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां होगी मुख्य बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श आदि। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, जिसमें महिला और बच्चों के पोषण, सीमित तेल और चीनी के सेवन एवं मोटापे के नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में

आवेदन के लिए चलेगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। विश्व के प्रमुख नेता कल नई दिल्ली में होंगे एकत्रित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक सहयोग और स्थिरता पर होगा मंथन। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वन रक्षकों और अधिकारियों के बलिदान का स्मरण किया गया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नॉर्थ बे मिनी मैराथन कल सुबह 6 बजे होगी शुरू। मैराथन में भाग लेने वाले धावकों के लिए विशेष फेरी की व्यवस्था की गई है। और मायाबंदर में पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित, कठिन परिस्थितियों में पूर्व छात्रों के संघर्ष और उपलब्धियों को किया गया याद।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी तथा इसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत मंडपम में होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देश भाग ले रहे हैं। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सहित कई देशों के नेता शामिल होंगे। आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। यह दिवस देश के जंगलों, वन्य जीवों और जैव विविधता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वन रक्षकों, अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के सदस्यों के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वन अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री यादव ने कहा कि समर्पित वन अधिकारी देश की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जंगल की आग, तस्करों और शिकारियों से मुकाबला करते हुए देश की प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने वाले निडर वन अधिकारियों को याद किया। श्री यादव ने कहा कि पेड़, वन्यजीव और नदियाँ केवल प्राकृतिक संपदा नहीं हैं बल्कि मानव जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए वन संरक्षक डी शेखर ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वनों की रक्षा करते हुए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
1: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अपने घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, मैंग्रोव और अनूठी समुद्री व वन्य जीव संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगलों को सुरक्षित रखने में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। द्वीपों के दुर्गम जंगलों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहकर हमारे वनकर्मी जिस तरह

0: अवैध कटाई और वन्य जीव तस्करी को रोकते हैं, यह दिन उनके उसी अदम्य साहस को नमन करता है। यह दिन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के युवाओं और नागरिकों को यह सिखाता है कि प्रकृति और हरियाली को बचाना सिर्फ सरकार या वन विभाग का ही नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के खूबसूरती और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखने के लिए वन शहीदों का यह बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
1: विवेकानंद केंद्र विद्यालय लंबालाइन में आज विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशक ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि और चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों से स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय फरारगंज में भी कल विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। सहायक वन संरक्षक आर एस शरद मुख्य अतिथि और जिला परिषद सदस्य वी के अब्दुल अजीज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, मैराथन और छात्र मिलन समारोह। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खेल एवं युवा मामले विभाग, सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से नॉर्थ बे मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पुरुष और महिला वर्ग में 10 किलोमीटर की यह दौड़ कल सुबह 6 बजे चूनाभट्टा से शुरू होगी और नॉर्थ बे समुद्र तट से होते हुए वापस चूनाभट्टा में समाप्त होगी। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से कल सुबह 5 बजे चाथम जेट्टी से बम्बू फ्लैट जेट्टी के लिए विशेष फेरी सेवा की व्यवस्था की गई है। मैराथन में भाग लेने वाले धावकों, अधिकारियों और कर्मचारियों से सुबह 4:45 तक चाथम जेट्टी पहुंचने का अनुरोध किया गया है। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में आज पहली बार पूर्व छात्र मिलन और विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पूर्व छात्रों ने भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. R.V.R. मूर्ति ने ऐसे आयोजनों को पूर्व छात्रों और वर्तमान विद्यार्थियों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। मुख्य अतिथि अंडमान कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर B.S.V. मीरा सेट्टी ने मध्योत्तर अंडमान के दूरदराज के इलाकों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूर्व छात्रों के संघर्ष और उपलब्धियों को याद किया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व छात्र समिति का गठन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर R.V.R. मूर्ति को संरक्षक, डॉक्टर B.S.V. मीरा सेट्टी को अध्यक्ष और डॉक्टर अजहरुद्दीन सहाजी को संयोजक बनाया गया। राजधानी श्री विजयपुरम स्थित हैडो के चिल्ड्रंस पार्क में 14 से 23 सितंबर तक श्री बाल गणेश पूजा समारोह का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स क्लब की ओर से आयोजित इस 36वें वार्षिक पूजा समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। गणेश प्रतिमा का विसर्जन 23 सितंबर को किया जाएगा। अंडमान निकोबार राज्य शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत आज रांची बस्ती स्थित CPWD के बहुउद्देश्य हॉल में हुई। सूचना प्रचार और पर्यटन सचिव विनायक चमड़िया ने मुख्य अतिथि के रूप में शतरंज की पहली चाल चलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में मध्योत्तर अंडमान जिला शतरंज चैंपियनशिप से चुने गए खिलाड़ियों सहित द्वीप समूह के करीब 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 9 मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता के शीर्ष 4 खिलाड़ी दिसंबर में उत्तर प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को कुल 1,00,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि और ट्रॉफियां दी जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व के प्रमुख नेता कल नई दिल्ली में होंगे एकत्रित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन।

सम्मेलन में वैश्विक सहयोग और स्थिरता पर होगा मंथन। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वन रक्षकों और अधिकारियों के बलिदान का स्मरण किया गया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नॉर्थ वे मिनी मैराथन कल सुबह 6 बजे होगी शुरू। मैराथन में भाग लेने वाले धावकों के लिए विशेष फेरी की व्यवस्था की गई है। और माया बंदर में पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित, कठिन परिस्थितियों में पूर्व छात्रों के संघर्ष और उपलब्धियों को किया गया याद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस बीच वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम के बारे में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास में 35 से 45 किलोमीटर के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए श्रीविजयपुरम से कल रात 8 बजे रवाना होगा तथा डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा 13 तारीख को दोपहर 2 बजे। एमवी कैंबल बे श्रीविजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा 13 तारीख को सवेरे 9 बजे तथा उसी दिन रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट कल सवेरे श्रीविजयपुरम से 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाएगा एवं कार्निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा 13 तारीख को शाम 4 बजे। एमवी कालीघाट 24 तारीख को सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए यात्रा आरंभ करेगा तथा कैंबल बे से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा 27 तारीख को सवेरे 12 बजे दोपहर 12 बजे। जलयान नालंदा 15 तारीख को सवेरे 9 बजे श्रीविजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंबल बे जाएगा एवं कैंबल बे से छूटकर ननकौरी होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा 17 तारीख को सवेरे 8 बजे। एमवी बम्बुका कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा। एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा तथा शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम आएगा कल ही सवेरे 8:30 पर। एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से स्वराजदीप जाएगा और 8:45 पर स्वराजदीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप स्वराजदीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा कल सवेरे 7 बजे तथा 13 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्रीविजयपुरम आएगा। एमवी रानीचंगा श्रीविजयपुरम से स्वराजदीप जाएगा कल दिन में 11:30 पर एवं दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा एवं दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा कल ही शाम 4:30 पर। एमवी रानी लक्ष्मी कल शाम 5 बजे स्वराजदीप के लिए श्रीविजयपुरम से रवाना होगा तथा स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा 13 तारीख को सवेरे 5:30 पर। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

और अब जन सूचनाएं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट यानी प्रसारण सहायकों के पैनल तैयार करने हेतु चयन परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। 31 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले एवं श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आकाशवाणी के ड्यूटी रूम से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। प्रसारण सहायक के रूप में चयन भविष्य में किसी भी नियमित रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। अभी आप जन सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अब सुनिए फिल्म प्यार दीवाना होता है का गीत।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: युवा वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सफलता कोई मंजिल नहीं जो अचानक मिल जाए, छोटे छोटे परिश्रमों का वह खूबसूरत परिणाम है जो एक दिन दुनिया को हैरान कर देता है। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे भारत के महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। उनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गंगोड़े गाँव में हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक, सरल और देशभक्त स्वभाव के थे। विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे गांधी जी के आश्रम में रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सादगी को अपनी जीवन का आधार बनाया। वे लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने की प्रेरणा देते थे। विनोबा भावे का सबसे प्रसिद्ध कार्य भूदान आंदोलन था। उन्होंने भूमिहीन गरीब किसानों की सहायता के लिए जमीन के मालिकों से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान करने का अनुरोध किया। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज में समानता और सहयोग की भावना फैलाने का प्रयास किया। विनोबा भावे एक महान लेखक और चिंतक थे। वे शिक्षा और सामाजिक सुधार के समर्थक थे। उनके निस्वार्थ जीवन और समाज सेवा के लिए उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विनोबा भावे का जीवन हमें सत्य, अहिंसा, त्याग, सादगी और मानव सेवा का संदेश देता है। वे भारत के महान समाज सुधारकों में हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, आज शुक्रवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें गुरुवार शाम 4 बजे से 4:30 तक इन नंबरों पर 2325402-2555-8 हमारा स्टडी कोड है 0312। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो फ्रेंड।
1: जी मैम नमस्कार, जय श्री महाकाल।
0: जी नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम मैं शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी नमस्कार, बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कांटे मूवी का एक सोनू निगम जी की आवाज में गाना रहेगा, यारा मंग यारी रब्बा मैं कुरो के तेरी मैं पराई मंगलाई।
0: वैसे आप करते क्या हैं?
1: मैं स्लिम ब्लाइंड हूँ और समाज सेवा के कार्यों में लगा देता हूँ मैम, जैसे कि गाय को चारा खिलाना हो गया, पक्षियों को दाना रखना हो गया और समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना हो गया और पेड़ पौधे लगाना हो गया मैम।
0: जी आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके कार्यों से ऐसे ही हमें प्रेरणा मिलती है। बताइए आज के दिन ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: मैम हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी रहेंगे राजस्थान से, पुरुषोत्तम भैया रहेंगे बदरुआ से, अविनाश जी रहेंगे त्रिपुरा से और हमारे मित्र रहेंगे गजराज लोधी जी, कल्याण सेन जी, भगवान सिंह परमार जी, अमल जी, विमल जी, रमेश पात्रे जी, रमेश प्रजापति जी और तमाम जितने भी लोग हमें आज की शाम सुन रहे हैं उन सभी को डेडिकेट रहेगा
0: जी,
1: और स्पेशली मैम आपके लिए डेडिकेट।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत।

0: जी प्रेम जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो।
0: जी हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम
0: जी
1: और गाने के बोले ये चांद कोई दीवाना है
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो
1: जी।
0: वैसे
1: और
0: आज का दिन कैसे गया आपका?
1: काफी अच्छा है आज हमारा, और हमारे यहाँ पे लहसुन की सफाई हो रही है अभी
0: जी
1: जी, तो अभी उसके सफाई होने के बाद मंडी में सेल करने के लिए ले जाते हैं
0: जी जी जी
1: जी। और अभी
0: बहुत
1: फिलहाल हमने खेतों में सोयाबीन की फसल लगा रखी है
0: जी बहुत अच्छी बात है
1: जो, हाँ जो अभी जो 2 महीने की हो गई है
0: जी। तो बताइए ये गीत आज के दिन किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी। भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, केसरी सिंह राजपूत, अविनाश आशुतोष, संगीता जी और रमेश टेलर भोपाल से है और सुनील झा है। एक और दोस्त है हमारे रानू गुप्ता देवास
0: जी। तो चलिए प्रेम जी, आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार। आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। अच्छे। रंग
0: तो आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से फिल्म चांदनी का टाइटल सॉन्ग।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: अभी थोड़ा हल्का सा बारिश हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा मौसम तो बदली है।
0: जी, और आज का दिन कैसा गया आपका?
1: बढ़िया गया। आज तो त्योहार भी मना रहे हैं, पोला पर्व हमारे यहाँ।
0: जी, आप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बताइए, आज के दिन ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, काराम जी है और सभी साथ
0: तो योगेश जी, हमें आपसे
1: जी।
0: बात कर कर बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत।

0: मुझे ये काम किया? तुमने मुझे बदनाम किया।
1: पिंको मुझे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
0: खैर छोड़ो, डरपोक कहेंगे।
1: प्यार मुझे तुम करते हो।

लिख कर बस।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, लोकेंद्र वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आपके प्रोग्राम से तो मैं करीब 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है।
0: जी, ऐसे ही स्वस्थ रहिए और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, क्योंकि हमें खुशी होती है कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अब गणेश चतुर्थी की स्थापना होने वाली है, तो मुझे भगवान गणेश जी का कोई सा भी एक फिल्मी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: जी, हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं मैडम।
0: जी, धन्यवाद। तो बताइए, ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये हमारे अनु कुमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सतीश रघुवंशी जी, दिलीप पाहुजा जी हैं, और हमारे गौतम राय बोला जी, और तो हमारे धीरज भाई।
0: तो चलिए, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
4: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है के मानता नहीं से। समीर के लिखे इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त हैं। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समक्षक पद पर नियमित रूप से कार्यरत हों अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समक्षक योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समक्षक योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन अवश्य प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 2,50,000 प्रति माह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रेज्यूमे 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रेज्यूमे चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रेज्यूमे ad.pmb@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ एटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में 2:03 से शाम 4:30 तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड की विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। अभी आप रोजगार समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए गौरव कान।

0: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं. और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में. बाय ऑफर्स अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।

0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेयरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia annual summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet philosopher Thiruvalluvar during the meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce, and the safety and well-being of seafarers. The Prime Minister thanked Iran for its regular high-level participation in BRICS-related meetings despite the challenging circumstances. The Prime Minister also held a bilateral meeting with UN Secretary General Antonio Guterres. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said the economic strength of BRICS has grown at nearly twice the pace of the rest of the world. He said new possibilities for innovation, spanning everything from grassroots initiatives to frontier technologies, are taking shape within the BRICS countries.
4: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
3: The Prime Minister said amid global uncertainties, India today offers a source of confidence for growth and stability. He called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World.
4: रिजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड

कार्यक्रम संदेशे आते हैं। श्रोताओं, व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9474234000 पर अपना नाम, फिल्म का नाम, अपना पता व गीत के बोल लिख भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पसंद के गीत आप तक पहुंचा सकें। तो श्रोताओं, पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आया है। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप सुनना चाहती हैं साजन का घर फिल्म का ये गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आप प्रस्तुत

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत की फरमाइश आई है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। ये लोग सुनना चाहते हैं मोम की गुड़िया फिल्म का गीत।

मोहाली पंजाब से गुरप्रीत अंगोड़ी, जसबीर कौर, महीकप्रीत कौर और सहीजप्रीत कौर सुनना चाहते हैं मोहरा फिल्म का गीत। आवाज़ें पंकज उदास और साधना सरगम की।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान अस साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मित्रा नवाज़ और बेबी चाहत की। ये लोग सुनना चाहते हैं दोस्ताना फिल्म का गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस बीच वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम के बारे में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास में 35 से 45 किलोमीटर के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती हैं, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस समय रात्रि के 10:30 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब

यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

एमएमवी 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 21वीं तिथि तदनुसार 12 सितंबर सन 2026 सवेरे के 5:28 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।